0: मैं पाचू
1: इटीवीन्यो और रेडियो पियोम चुनकेरे वेर क्वारो बिमारा मैं पाचू
2: इवान लंग यू बिरोटेला लोका कामुपेने
1: इटीवीन्यो और रेडियो.